0: है स्ट्रिंग
1: फ्रॉम मर्सी बीट To Motown, we've got the best variety of 60s hits. Nation 60s.